पर्सनली अमित कुमार की आवाज़ जो है वो मेरी पसंदीदा आवाज़ों में से एक है, और तेरी कसम फिल्म का ये गाना था, आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत RD बर्मन का था। सुबह के 5:34 हुए हैं और गर्मी में दिन जो है जल्दी निकलता है। मैं अपने स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ, मतलब काफ़ी जल्दी दिन निकल गया, अब तो बहुत अच्छा, मतलब एकदम क्लियर दिखने लग गया। यानी अब क्या होता है ना कि घर के काम भी जो है जल्दी शुरू हो जाते हैं, सब लोग जल्दी जाग जाते हैं और आलस भी नहीं आता एज़ कम्पेयर टू सर्दी, उसमें तो खैर रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। लेकिन हम दिल्ली वालों की शुरुआत जो है वो तेज़ गर्मी में भी चाय से होती है। मतलब अब हम चाय ना पिए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो शुरुआत तो उसी से ही होती है। खैर, तो हम दिल्ली के लोग सबसे आगे हैं खाने पीने के मामले में भी। तो इस गाने के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ, और ये गाने भी बहुत ठंडी ठंडी फीलिंग देता है। सो मैंने सोचा कि आज आपको ठंडे गाने सुनाए जाएँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो इस गाने का मज़ा लीजिए। इस गाने के बाद आपसे मिलता हूँ।

गर्मी का टाइम है, बिल्कुल भी प्यासे मत रहिएगा, पानी ज़रूर पीना। और खैर, मुझे बताने की ज़रूरत थी क्या कि ये इजाज़त फिल्म का गाना था? वैसे ये तो हद से भी हद से ज़्यादा पॉपुलर गाना है, सभी ने सुना है। अच्छा, वैसे मैं ना आपको रात के 3 बजे से अपनी बातें और गाने सुना रहा हूँ पुराने वाले, लेकिन अब आपको कोई और सुनाएगा, क्योंकि भोर सुहानी शो का समय जो है वो पूरा होने वाला है और अगले घंटे आप सुनेंगे नेक्स्ट शो अर्पण सुरुति जिंदल के साथ। तो आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर एक से बढ़कर एक गाने और शोज का मजा लेते रहिए, हर पल हर दिन 24 घंटे नॉनस्टॉप। मैं आपसे दोबारा जल्दी मिलूंगा, तो अभी के लिए मुझे यानी पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्ते।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: ఇప్పుడు ఆకాశవాణిలో హిందీలో వార్తలు వింటారు.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की.
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया. भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की. श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे. वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है. भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे. इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है. संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी. इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया. उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया. गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं. तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे।

ತೊಳುಕೆ ಮಣಿ ಮುಳೆ ತೀತ ಮದಿ ಗೋದಣ್ಣ ಬರ್ತಿಲ್ಲ.

మన్ని ఒక్క శ్రీ చైతన్యలోనే.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: Yes, that was an amazing song to start with. Once again, a very good morning to each one of you who are tuned into Akashvani FM Rainbow 101.9. धूप धूप दिमाग से निकलता ही नहीं, इतनी गर्मी में एनर्जी भी जल्दी ड्रेन हो जाता है. फिर बॉडी और माइंड दोनों को रिचार्ज करने के लिए एक कप चाय तो बनता ही है. और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल टी डे. चाहे समर हो, विंटर हो या बारिश का मौसम, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक इमोशन है. जिन लोगों को चाय की आदत बन जाती है ना, उनका दिन चाय के बिना कंप्लीट ही नहीं होगा. मैं हूं नम्रता, आपके साथ इस शो में, और शो का नाम है नमस्ते हेलो आदाब. Stay tuned, now we will be listening to a ब्यूटिफुल सॉन्ग.
2: तेलंगाना आविर्भाव.

वेलकम बैक लिसनर्स, वेलकम बैक टू आर शो कॉल नमस्ते हेलो आदाब एंड आई एम आरजे नम्रता विथ यू। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल टी डे। सच बताएं दोस्तों, चाय हम इंडियंस के डेली लाइफ का एक परमानेंट मेंबर है। मूड ऑफ हो तो चाय, काम ज्यादा हो तो चाय, दोस्तों के साथ गॉसिप हो तो चाय, और गर्मी में एनर्जी ड्रेन हो जाए तो भी चाय। कुछ लोगों को सुबह अलार्म से नहीं, चाय की खुशबू से होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाय के साथ कॉन्वर्जेशंस भी स्पेशल लगते हैं और कई स्नैक्स भी हम खाते रहते हैं टी के कॉम्बिनेशन में। तो दोस्तों, आपको चाय के साथ क्या खाना पसंद है? आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0402323482 पर। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: Welcome back, listeners. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9 with me, RJ Namrata. स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट. इस टाइम में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंसेस का रिजल्ट सीजन चल रहा है. डिफरेंट बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम स्केड्यूल्स, रिजल्ट्स और एडमिशन नोटिफिकेशंस रिलीज कर रहे हैं. स्टूडेंट्स रेगुलरली कीप चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट्स एंड कीप अप्लाइंग. आजकल ऑनलाइन कोर्सेज, स्किल प्रोग्राम्स और मल्टीपल करियर ऑप्शंस अवेलेबल है. So students, don't stress a lot, just focus and be consistent. Have a healthy mindset and stay positive. Sunte rahiye FM Rainbow 101.9, Rainbow ke saath hai life rangeen.

Welcome back, listeners. You are listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. Summers में बच्चे बहुत सारी fun activities कर सकते हैं. पूरा दिन सिर्फ मोबाइल या टीवी देखने के अलावा स्विमिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग जैसे एक्टिविटीज में एंकरेज करनी चाहिए पेरेंट्स को. समर कैंप्स, म्यूजिक क्लासेस या कोडिंग वर्कशॉप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हॉलीडेज में नए स्किल्स सीख सकते हैं. पेरेंट्स बच्चों को हाउस होल्ड चोर्स में भी इन्वॉल्व करनी चाहिए जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, सो दैट दे विल बिकम इंडिपेंडेंट. थोड़ी मस्ती, थोड़ा आउटडोर प्ले और थोड़ा फैमिली टाइम, वही होता है रियल समर वेकेशन. स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 विथ मी आरजे नम्रता. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन.

नमस्ते, हेलो, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे भूमिश्री एंड यू आर नाउ टाउन्ड इनटू रेनबो एफएम 101.9 पर। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। उसका मतलब ये नहीं हम मैथ्स, साइंस या सोशल स्टडीज पढ़ेंगे। लेट्स डाइव इनटू आर्ट, द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन। आजकल की बागडोर भरी जिंदगी में हम हर वक्त काम में बिजी रहते हैं। सुबह उठते ही डेडलाइंस और नोटिफिकेशंस का प्रेशर शुरू हो जाता है। हम भूल गए हैं कि थोड़ा रुकना चाहिए और सुकून से सांस लेना भी ज़रूरी है। बस बिजी होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी मेंटल पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफ सिर्फ टारगेट पूरे करने के लिए नहीं होता, यह हर पल को महसूस करने के काम है। स्टे विथ मी, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे हम छोटे छोटे चेंजेस से अपनी लाइफ में बैलेंस वापस ला सकते हैं। So stay tuned to FM Rainbow 101.9.

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे भूमिश्री और आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आताप ऑन एफएम रेनबो 101.9। तो हम बात कर रहे थे द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन। एक चीज़ है जो हमें स्ट्रेस देती है, पता है वो क्या है? हमारा मोबाइल फ़ोन। हमारे आंखें हर वक्त स्क्रीन पर होती है। क्या आपको कभी ने सोचा अगर अगर 1 घंटे के लिए हमारे साथ फ़ोन नहीं होगा तो कैसा होगा? इस वीकेंड उसको ट्राई करके देखिए। बस 1 घंटे के लिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ कीजिए। इस वक्त में आपको नोटिफिकेशन की चिंता नहीं होगी। आप अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस कर पाएंगे, चाहे वो घर की खामोशी हो या बाहर की हवा। या डिजिटल डिटॉक्स है ये आपकी दिमाग को नया एनर्जी देता है और स्ट्रेस को दूर भगाता है। जब आप डिजिटल दुनिया से दूर होते हैं तो आपका दिमाग जो है थोड़ा शांत भी हो जाता है। आपको अपने आप से बात करने के वक्त मिलता है। ये एक छोटा सा कदम है लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अब वक्त है एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक लेने का। तब तक सुनते रहे एफएम रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Cooking is always relaxing, सच में? लेकिन वो तो कहाँ relaxing है? कड़े होके तो काम करना पड़ेगा हमें. नमस्ते, हेलो, आदाब. ऑन FM Rainbow 101.9 मैं हूँ आपकी होस्ट RJ भूमिश्री. रोजाना बाहर का खाना मंगवाने के बजाय कभी कभी घर पे अपने हाथ से खाना बना के देखिए. बिलीव मी, कुकिंग इट्स नॉट जस्ट अ कोर, ओके, वो काम नहीं होता, यह एक तरह की मेडिटेशन है. जब आप किचन में होते हैं, सब्जियां काटते हैं या मसाले भूनते हैं, उनकी कुछ भी हुआ हुआ, तो आपका पूरा फोकस उसी मोमेंट में रहता है. यह एक चीज है, जो तरीका है, जो खुद को केयर करने का. जब आप अपने हाथ से कुछ बनाते हैं तो उसमें सेटिस्फैक्शन जो मिलती है वो कभी किसी रेस्टोरेंट से मंगवाना से नहीं होता. आई होप आप इस वीकेंड अपने लिए कुछ अच्छा सा कुक करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड फॉर और मैं देखूंगी अपने फाइनल सेगमेंट में क्या करेंगे.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत

और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्ते, हेलो, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे भूमिश्री एंड यू आर नाउ ट्यून्ड इन टू FM रेनबो 101.9। हमने अभी स्लो डाउन के बारे में सुना है ना, मतलब डिजिटल टॉक्स वो सब। ठीक है, अभी हम आ जाएंगे अपनी आखिरी सेगमेंट में। वो है कि अगर आज हमने बात किया कि लाइफ को कैसे सिंपल और मीनिंगफुल बनाएं, आखिर में मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने हॉबीज को वापस शुरू कीजिए जिन्हें आप अपने बिजी लाइफ के कारण छोड़ दिया है। क्या आपको याद है बचपन में वो जो ड्राइंग बुक होती थी या वो पुरानी डायरी जो आप लिखते थे? हॉबीज का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिविटी या कंटेंट बनाना नहीं होता, बल्कि ये आपकी सोल की खुशी के लिए होते हैं। जब आप कोई काम बिना किसी रिजल्ट या प्रेशर को एक्सपेक्ट करने के बिना तो अपने दिमाग से निकाल कर करते हैं, वो होता है अपना मन से भरा हुआ काम। चाहे वो गार्डनिंग हो, सिंगिंग हो, या सिर्फ विंडो से बाहर देखना, तभी ही आप सही मायने में खुद से कनेक्ट होते हैं। आज एक चैलेंज लेते हैं अपने आप से। इस वीकेंड वापस वो पुराना हॉबी उठाइए जिसे अपने आपने सालों से टच नहीं किया। ट्रस्ट मी,

like meeting an old friend again. It brings back the lost spark of joy. दोस्तों, अपनी जिंदगी में थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए. आपकी खुशी आपकी प्रायोरिटी है. आपका दिन शुभ हो और हमेशा आप मुस्कुराते रहे. मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे भूमिश्री और नमस्ते हेलो आदाब एफएम रेमबो 101.9.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: Welcome back, dosto. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9 with me, RJ Namrata. Till now, Bhumishree spoke about art of slow living and digital detox. दोस्तों आजकल इंसान से ज़्यादा टेंशन मोबाइल बैटरी से होता है. अगर चार्जिंग 20% के नीचे आ गया तो पैनिक मोड ऑन हो जाता है. चार्जर ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ब्राइटनेस कम कर देते हैं और पावर सेविंग मोड ऑन कर देते हैं. सबसे फनी मोमेंट तब होगा जब बैटरी 1% हो और तब भी किसी इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना पड़ेगा. कुछ लोग तो फ़ोन चार्जिंग में लगा के भी यूज़ करते रहते हैं, मतलब जैसे फ़ोन को रिचार्ज चाहिए वैसे ही हम में भी ब्रेक्स, गुड स्लीप, म्यूजिक और थोड़ा रिलैक्सेशन ज़रूरी है, वरना हम भी लो बैटरी मोड में चले जाते हैं. स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन.

0: Yes, we have another caller on the line. Hello.
1: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब मैडम जी.
0: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं शेर खान बोल रहा हूँ, तालाब कट्टा अमन नगर से.
0: जी शेर खान सर, बताइए आपके लाइफ में आपको आपको ज़्यादा यूज़फुल हुआ कौन से आदत है?
1: जी पहले तो मैं सभी भाई बहनों को, सुनने वाले दोस्तों को, आपको प्यार भरा सलाम आदाब कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे.
0: जी
1: जी
0: बताइए सर.
1: मैडम, मेरी आदत, मेरी जिंदगी में, जब मैं आपको बता दूं, मैं ब्लाइंड हूँ. मैं बचपन से ही ब्लाइंड हो गया, तो मेरी जो यूजफुल, जो मेरे लिए फायदेमंद चीज रही है, वो पेशेंस यानी सबर करना.
0: अच्छा
1: जी सबर करना और दुआएं करना, सबके लिए भी और अपने लिए भी दुआएं करना और सबर करना. बस अल्लाह की जात से उम्मीद रखना, ना उम्मीद नहीं होना, कभी मायूस नहीं होना. बहुत तकलीफें होती है, मैं रोता भी हूँ, तकलीफ भी होती है, गम, कुछ खुशी गम चलते रहता है, लेकिन मैं खुद ही अपने आप को संभालने की कोशिश करता हूँ, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहता. ये मेरे लिए आज तक यूजफुल रहा और मैं आगे भी अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ, बस अपने आप को संभालने की कोशिश करूँ, अच्छे अमाल करने की कोशिश करूँ और दुआएं करूँ सभी के लिए और खुद के लिए भी. और जो लाइफ मिली है, अल्लाह का जो नियामत है, तोहफा है हमको गॉड की तरफ से गिफ्ट, तो उसको अच्छी तरह से अल्लाह की मर्जी से गुजारने की कोशिश करूं. कोशिश करना हमारा काम है, बाकी सब अल्लाह की मर्जी में है.
0: ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
1: मैडम जी, एक गाने की रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरी करें तो. फिल्म
0: सर बताइए.
1: का नाम है आया सावन झूम के, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है. बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो.
0: ओके सर, मैं देखकर प्ले करने के लिए कोशिश करती हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू
1: ओके
0: सो
1: मैडम,
0: मच,
1: शुक्रिया आप वक्त दिए.
0: थैंक यू सर. सो दैट वॉज शेर खान जी, और अब हम सुनेंगे और एक गाना. बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक.

0: अब और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो,
1: ओम शांति। नमस्कार नमस्कार जी, मेरा नाम पोल सेठी मेहर बाबा जुबली से बात कर रहा मैडम।
0: नमस्कार जी। बताइए सर, आपके लाइफ में कौन सी आदत आपको बहुत यूजफुल हुआ है?
1: जी जी मैडम, अपन आदमी है, जानवर नहीं है। अपन जिंदगी में किसी को भी हेल्प करने के लिए देखना पड़ता। मैं ब्लाइंड मैडम बहुत आदमी को जूबीज में, बंजार फिल्ड में, गांव से लाके काम पे लगाया। इन लोग बहुत खुशी से काम कर रहे मैडम। अपन को होते हेल्प करना, नहीं है तो छोड़ देना मैडम। ऐसा है मैडम। ठीक
0: ओके
1: है
0: सर,
1: मैडम, पोल्स पोल्स सिटी में हर बाबा जूबीज मैडम। थैंक
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: यू मैडम।
0: सो ही वॉज टेलिंग दैट वी हैव टू बी वेरी हेल्पफुल, सो दैट इज़ अ वेरी गुड हैबिट इंडीड। सो लेट्स लिसन टू अनदर सॉन्ग।

0: సేవలకు సంబంధించిన హక్కులు 1987 సెక్షన్ 12 లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ ప్రకారం దేశ పౌరులు ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా న్యాయ సహాయాన్ని న్యాయబంధు మొబైల్ యాప్ మరియు www.probono-dog.in ద్వారా పొందవచ్చు.
1: हमारे साथ और एक कॉलर जुड़ा है. हेलो हेलो
2: हरिओम.
1: हरिओम सर. सर आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मेरा नाम विलास पेनुरकर है. मैं नल्ला कुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ.
1: ओके सर, बताएं आपके लाइफ में कौन सी ऐसी आदत है जो आपको बहुत यूजफुल हुआ है?
2: हाँ जी, मेरी सबसे पहले और सबसे अच्छी आदत यह है कि मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ.
1: ओह वेरी गुड सर, वेरी गुड.
2: यानी कि मैं 4 बजे उठता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन सवेरे मैं जब उठता हूँ तो 4 बजने चाहिए.
1: अच्छा अच्छा.
2: और रात में मैं 10 बजे सो जाता हूँ. ये मेरी सबसे एक अच्छी आदत है. और दूसरी आदत ये है कि कहीं भी पहुंचना हो, चाहे विवाह में सम्मिलित होना हो या स्टेशन पर जाना हो या और कहीं जाना हो, मैं समय से पहले वहां पर पहुंच जाता हूं.
1: ओके सर, ओके.
2: और तीसरी मेरी आदत है कि प्रतिदिन मैं योग करता हूं और योग कक्षाएं भी लेता हूं.
1: अच्छा.
2: योग करने से मैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखता हूं. डॉक्टरों के पास में जाने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती है. और योग कक्षाएं लेता हूँ, योग का ज्ञान लोगों में बांटता हूँ. और इसलिए क्या है कि समाज में भी मेरा ये मेरी ये इच्छा होती है कि योग प्रशिक्षण देना और समाज में जो लोग रहते हैं उनको उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रखना.
1: ओके सर, ओके सर.
2: समाज में योग के प्रति जागरूकता निर्माण करने का कार्य मुझे करना बहुत अच्छा लगता है.
1: ओके सर.
2: इसके साथ साथ मैं एक्यूप्रेशर के द्वारा उपचार भी करता हूँ. जिन लोगों को गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों का दर्द है या सियाटिका नाड़ी से होने वाला दर्द है, ऐसे व्यक्तियों को मैं एक्यूप्रेशर द्वारा 5 से 7 मिनट में ठीक करता
1: हूँ. ओके सर.
2: और ये जो मेरा उपचार है ये निःशुल्क है. इसके लिए कोई पैसे मैं नहीं लेता हूँ.
1: ओके ओके सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
2: आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ.
1: थैंक यू सर, बहुत अच्छी आदत है आपका. थैंक यू सो मच. हेलो, वी हैव अनदर कॉलर ऑन द लाइन. हेलो
3: हेलो, हिंदी बोलिए. सही गुण आपका बात.
1: हेलो
3: हेलो, सही गुण है. हिंदी हिंदी बोलो.
1: ठीक है सर, बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मेरा नाम इमरान है, मोहम्मद इमरान. मैं तालगड्डा हैदराबाद से बात कर रहा हूँ.
1: ओके इमरान जी.

0: बताइए, आपके लाइफ में ऐसी आदत क्या है जो आपको बहुत यूजफुल हुआ है?
1: हमारी लाइफ में देखिए सर, कुछ भी ऐसी आदत तो नहीं है।
0: सर कौन, किसी ना एक भी होता है ना सर?
1: जी
0: हेलो
1: हेलो,
0: सर बताइए
1: ये आप लोग क्या कह रहे हैं आज के टॉपिक पे? जी
0: सर, आपके लाइफ में कौन सी आदत आपको बहुत यूजफुल हुआ है, जैसे कि सवेरे उठना या फिटनेस या फूड हैबिट्स, कौन सा आदत आपको बहुत यूजफुल हुआ है?
1: हमारा कैसा है, मतलब सुबह उठते ही हमारे से पहले चाय हो जाना, चाय के बाद सोना का नाश्ता हो जाना, फिर 12 बजे की चाय हो जाना, फिर दोपहर का लंच हो जाना, फिर शाम में बाद नमाज ईशा 8-9 बजे रात का डिनर हो जाना, फिर चाय हो जाना।
0: ओके सर, ओके
1: चाय के बस बड़े वो है हम
0: ओके सर।
1: जी। और इसके अलावा और एक बात आपसे ये कह रहा था मैं, अच्छा आप लोग सबसे बात करते, सबका कॉल उठाते, हमारा कॉल क्यों ना उठाते?
0: अभी उठाए ना सर, आपका कॉल ही है तो ऑन एयर में।
1: जी, देखिए देखिए, हैदराबाद के जितने भी लिसनर्स है ना, हमारी सबसे बातचीत होती है चैनल पे, हम सबसे बात करते रहते, सब जने क्या करते, हमारा कॉल रिसीव न करते, सबका कॉल रिसीव करते।
0: ऐसे नहीं होता है सर, आपका कॉल भी हम ऑन
1: जी
0: एयर पे
1: अभी
0: लेते
1: दे
0: हैं।
1: अभी अभी मैंने अभी देखा गया, तो हमारा सवाल पहले उठाना चाहिए आप लोग, हम तो आप लोगों के चैनल के बहुत बड़े वो है, मालूम ही है
0: ओके सर, थैंक यू
1: हम
0: सो
1: लोग।
0: मच। ओके दैट वाज इमरान जी, और लेट्स टेक अनदर कॉल। हेलो,
1: नमस्ते
0: हेलो, नमस्ते सर, बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: यार, मैं हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल बात कर
0: जी सर बताइए, आज के टॉपिक के
1: रहा
0: बारे में,
1: हूँ।
0: आपके लाइफ में।
1: मेरी एक आदत, मैं अपने आप को अच्छा समझता हूँ, गुफ्तगू के दरमियान में इस्तेमाल वाली बात नहीं करना चाहता हूँ।
2: మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ
0: హలో
2: కాల్ని హోల్డ్ లో ఉంచారు. హలో
1: హలో,
0: సార్ బతాయే సార్.
1: గుఫ్తగూ కే దౌరాన్ మే ఆద్మీ ఇస్తేమాల్ నహీ దేనా నా బాత్ మే, బాత్ కిసీ కి భీ పూరి సున్నా ఔర్ ఇస్తేమాల్ మే నహీ లానా, యే ఆద్మీ కో సంతులన్ మే రహ్ కే బాత్ కర్నే కి యే ఆదత్ మేరే పాస్ హై,
0: అచ్చా అచ్చా,
1: కభీ భీ కిసీ కో ఉల్జానా నహీ బాత్ మే, ఉల్జానా ना नहीं, ये मैं अपने आप में ऐसा महसूस करता हूँ।
0: ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेट्स लिसन टू अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग नाउ।

0: रेनबो 101.9।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: FM Rainbow 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: FM Rainbow 101.9.

0: శ్రీ చైతన్య విద్యా సంస్థలే.
1: FM Rainbow 101.9.

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है, फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो हम अक्सर मूवीज में जो देखते हैं सर, वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो। तो वो सिचुएशन वहां पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी, और ये टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीजों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000, 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जेएनके असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर के सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी वो ये काम कर

0: इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पर हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा
1: जी
0: ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लाडेन बन गया। और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका एफआईआर दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है।

0: 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है और गेट नंबर 10 से विजय चौक की तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पर हमला करते हैं, जिस पर अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी और ये मौका मुझको मिला। BSF के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
1: जी
0: 27 और 28 अगस्त 2003 को। एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
1: जी
0: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका कि कश्मीर के ज़मीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जैन के पुलिस BSF का बड़ा अहम किरदार रहा और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया। लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे,
1: जी
0: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो
1: जी
0: जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए, और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। BSF ने एक जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा, मेरी बटालियन ने, और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में 3rd फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
1: जी
0: वो गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड USA इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लाडेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा एनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही और
1: बिल्कुल
0: BSF को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फख्र की बात है हमारे
1: बिल्कुल बहुत
0: ऑर्गेनाइजेशन
1: सम्मान
0: के
1: की
0: लिए।
1: बात है और ये देश के लिए भी, देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा, वो कैसे आप लोगों ने, आपकी टीम ने फेस किया, और वो सब जो इंसिडेंट हुआ, जब फायरिंग हुई, फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई, जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ बड़ा
0: खुदकश
1: करना
0: अटैक
1: है।
0: करना है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि PM का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था,
1: बिल्कुल
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
1: बिल्कुल
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था, उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं,
1: जी
0: मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को
1: डिजाइन किया।
0: बनाया था, डिजाइन
1: अच्छा
0: किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टॉकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट TV विथ नाइट लिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई।
1: जी
0: अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड

0: टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था और सारी कोई आवाज नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज नहीं करेगा, शू की आवाज नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका
1: जी
0: किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले, हमारे पर फायर करे,
1: या
0: हमारे
1: वो भागने की कोशिश करे।
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी,
1: अच्छा
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी स्केप रास्ता था। और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे,
1: जी
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। और थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने, तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया ये बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर, शायद हम सही जगह नहीं आए। और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के, जो कि वॉल में फिट था और
1: अच्छा
0: बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था। नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं
1: कुछ
0: था,
1: भी नहीं।
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख
0: घुसता
1: रहा
0: हुआ
1: है
0: देख रहा था, जिसका हमको इल्म नहीं था। तो
1: बिल्कुल।
0: वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई, जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था, पाकिस्तानी
1: अच्छा
0: टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो
0: तो
1: शायद
0: शायद
1: वो
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता,
1: ओके।
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती थी।
1: ज्यादा होती
0: मार तो हम
1: बिल्कुल।
0: तब भी लेते, लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती। और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे, घर के फरीक,
1: अच्छा
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है। और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ
1: ओके
0: निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की
0: पूरी
1: गई और
0: हिफाजत
1: अपने
0: की
1: ऑपरेशन
0: गई।
1: को भी।
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों से,
1: अच्छा
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन
1: जी
0: छोड़ना पड़ा। 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहाँ ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है। अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर
1: जी
0: उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और
1: बिल्कुल
0: उसके बाद उस सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती। पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि BSF के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए,
1: जी
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी
1: जी
0: गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है, आंख
1: यानी कि
0: में।
1: आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया।
0: हाथ
1: आप उस
0: का,
1: वक्त
0: सिर्फ हाथ का
1: सिर्फ
0: अंदाजा
1: हाथ
0: हुआ,
1: का
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता
1: जी
0: नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा।
1: जी
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल
1: पता
0: टेबल
1: लगा
0: के ऊपर ही OT में पता लगा।
1: जी
0: डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी
0: और
1: सर,
0: हमने।
1: हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथ ही लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल BSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 1070 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां

0: को जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरीज रही
0: जी
1: वो बहुत ज़्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई
0: अच्छा
1: और बोन्स पूरी शेटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही ख़त्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे, क्योंकि
0: अच्छा
1: मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब 1 इंच साइज का स्टील का एक होता है
0: अच्छा
1: कमेंडेशन,
0: जी जी
1: मैं
0: जी
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा
0: जो
1: रखा
0: छाती पर
1: था।
0: लगता है।
1: जी, उस पर कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया
0: अच्छा
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया
0: जी
1: है,
0: जी
1: उसमें
0: दिल
1: ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया।
0: ओ
1: तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉज्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे
0: जी
1: बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत
0: अच्छा
1: एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई।
0: ओ
1: तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि मुझे दिख रहा था,
0: जी
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया,
0: जी
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है बह के
0: जी
1: बाहर आता है।
0: जी
1: फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा, ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहाँ कहाँ चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया।
0: जी आपने जैसे
1: और क्या,
0: बताया
1: उस
0: फायरिंग
1: कमरे
0: के
1: में
0: दौरान।
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं। मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल
0: और
1: सकता था,
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी 7 गोलियां शरीर
1: बिल्कुल
0: में।
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा क्योंकि हाथ का विजिबल था,
0: जी
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संग
0: अच्छा अच्छा
1: यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी
0: जी
1: पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने
0: जी
1: एक जीवन रक्षक के तौर पे
0: बिल्कुल
1: ड्राइंग रूम में लगा रखा
0: जिसने
1: है
0: आपका दिल
1: उसमें,
0: बचाया।
1: यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, बस सफिशियंट
0: बिल्कुल
1: थी वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस
0: एग्जैक्टली
1: भी दिमाग में आया
0: एग्जैक्टली
1: कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है, फिर वो
0: अच्छा
1: शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है। फिर ये भी ख्याल आया
0: फेंट हो
1: कि
0: जाता है और फिर
1: हाँ, कि मैं
0: होश
1: अगर कुछ दिन
0: चले
1: बाद
0: जाते हैं।
1: मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि
0: जी
1: मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने
0: आने
1: लगते हैं।
0: जी जी जी
1: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए,
0: जी
1: जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
0: नहीं हो पाई
1: एस्टेब्लिश नहीं
0: होगी
1: हो पाया, शिनाख्त
0: जाहिर है।
1: बाद में हुई,
0: जी
1: और नीचे आए, पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्टर जनरल BSF मिले मुझसे,
0: जी
1: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन ICU, एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो,
0: जी
1: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना, मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग रहा
0: जी
1: था।
0: जी
1: मैंने कहा सर फॉर वॉट? बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड।

0: Main accused of Indian Parliament attack, and whole country, whole nation, and BSF is proud of you
1: क्या
0: and
1: बात है
0: BSF team. तो वो ऐसा रहा ना कि सारा दर्द काफूर हो गया,
1: हाँ खत्म हो गया,
0: ये
1: सही कहा
0: नहीं
1: आपने
0: लगा कि दर्द में तो हम थे
1: जी
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी
1: बिल्कुल
0: पेन अगर है तो महसूस होगा. लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला, तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट
1: सक्सेसफुल
0: होता है, अगर
1: बिल्कुल
0: आप फाइनल फतह कर लेते हैं,
1: जी जी
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना,
1: हाँ
0: वो कहीं ना कहीं उसका पेन कम हो
1: कम हो
0: जाता है.
1: जाता है,
0: हाँ,
1: यस,
0: ये
1: उसका
0: है,
1: एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी
0: इतनी
1: थी
0: बड़ी
1: कि
0: थी.
1: उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल
0: हाँ,
1: होगा।
0: बिल्कुल. ही वाज अ ड्रीम चेज फॉर एवरी
1: एग्जैक्टली
0: फोर्सेस. ही
1: बिल्कुल
0: वाज अ हॉट
1: बिल्कुल।
0: केक इन द वैली.
1: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो
0: कर ही रहा
1: अपने
0: था
1: नमूने
0: फॉर
1: पेश
0: मोर देन
1: करता।
0: 9 ईयर्स. वैली में 1994 से 2001 तक ही वॉज ऑन किलिंग स्प्री. एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC 814 हाईजैकिंग,
1: और फिर
0: दिस शालीमार किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद JNK असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001,
1: बिल्कुल मैं
0: पार्लियामेंट
1: अनगिनत
0: पार्लियामेंट
1: पार्लियामेंट
0: अटैक
1: अटैक
0: 13 दिसंबर 2001
1: कितना
0: हजार एक. तो
1: बड़ा
0: उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इंतहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा
1: बहुत
0: अचीवमेंट थोड़ी है.
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: भी
1: बहुत
0: दिन
1: बड़ी
0: में
1: बात
0: 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है,
1: जी।
0: परिंदा नहीं पर मार सकता. तो इतना बड़ा प्लानर
1: इतना बड़ा
0: था,
1: प्लान है, इतना बड़ा
0: पाकिस्तान से
1: आतंकवादी
0: लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के,
1: जी
0: लॉजिस्टिक्स वेपन IED एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस
1: बिल्कुल
0: और पार्लियामेंट्री स्टाफ की. उन्होंने इतनी बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान पे खेल के, और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है. तो देखा जाए तो

0: आप लीड कर
1: बस
0: रहे थे,
1: लीड कर रहा था। मैं चाहता तो अपने किसी नंबर टू को भेज सकता था, नंबर थ्री को भेज सकता था,
0: लेकिन
1: लेकिन
0: आप फ्रंट पर रहे।
1: खुद के रहने से
0: जी
1: मोराल बड़ा अप होता है।
0: बिल्कुल,
1: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस
0: मौत
1: जाता
0: के मुंह
1: है,
0: में घुस गया।
1: और घुसे वो।
0: बिल्कुल,
1: गाजीबाव के माथे में घुसना कोई सिंपल
0: और
1: चीज
0: जैसा
1: नहीं
0: आपने
1: थी,
0: बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
1: 100% ट्रैप था। अदरवाइज वो मिलता नहीं हमको,
0: मिलता नहीं
1: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी
0: जाने।
1: जिंदगी खुद को कोसते
0: बिल्कुल,
1: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो। एंड वी आर प्राउड ऑफ दोज मोमेंट्स।
0: दुबे सर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी हैं कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
1: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
0: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से। सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माई लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
1: सो ग्रेट वर्ड्स, बिकॉज वी स्टिल रिमेंबर द ब्लड शेड इन ऑस्ट्रेलिया, द बांडी बीच वेरी रिसेंटली
0: जी
1: बाय द आईसीस कार्डर्स। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन। एंड इन दुबे सर्क, आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है ये सिलचर असम से।
1: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी
0: जी
1: तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सल
0: जी
1: एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है। ये
0: बिल्कुल,
1: वर्ड उनके थे, क्योंकि
0: अच्छा
1: बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
0: जी
1: जो
0: जी
1: अमिताभ
0: बैजो,
1: बच्चन, हाँ
0: अच्छा जी
1: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी,
0: जी
1: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है, और वो
0: बिल्कुल
1: रेप्लिका भी मेरे पास रखी है।
0: रखी है वो आपकी
1: आप
0: यादगार।
1: यूनिफॉर्म में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने
0: बिल्कुल
1: उसको धो के एक एक होल मार करके
0: जी
1: लगाया
0: जी
1: हुआ है।
0: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी
1: ओ
0: ग्राउंड
1: वाह,
0: जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको
1: एग्जैक्टली
0: बनाने
1: होती
0: के
1: है।
0: लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
1: एक्चुअली फिल्म
0: अनबिलीवेबल।
1: काफी उन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है,
0: जी
1: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है और एक
0: बिल्कुल
1: कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूवरशिप के लिए बनती
0: बिल्कुल
1: है।
0: सर एक चीज लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा,
1: जी
0: अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
1: होते हैं, होते हैं।
0: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है,
1: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
0: कुछ नहीं होता,
1: वहां
0: जान
1: जो
0: जाएगी या जान ली जाएगी
1: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का
0: या
1: खतरा
0: मरने
1: होता
0: का,
1: है, तीसरा कुछ नहीं होता।
0: तीसरा कुछ नहीं, या
1: मतलब
0: तो
1: दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप शहीद
0: जान
1: हो
0: से
1: जाते
0: जाते हैं,
1: हैं,
0: शहीद
1: बस
0: होते
1: दो ही
0: हैं।
1: कैटेगरी
0: बिल्कुल
1: होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं
0: जी
1: इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा, और आज के तारीख में आपके सामने मैं
0: बिल्कुल,
1: एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं।
0: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ
1: अरे
0: सर।
1: सर, सो
0: जी
1: नाइस, सो
0: सर
1: नाइस।
0: एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं सर, ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं, यूपी से।
1: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है,
0: जी
1: क्योंकि आप पीसीएम से हैं,
0: जी
1: 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा, और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं। यू
0: बिल्कुल,
1: प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
0: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूं, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं, जय हिंद सर, आपको सुन रही हूं, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
1: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं, जिसके नाम पे बीके दत्त है,
0: जी
1: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है, तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच।

सर, देश पर मर मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं। और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

0: सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए BSF में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं।
1: आप इस मौके पर मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है, हो
0: जी
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ये
0: क्या
1: उस फील्ड सिचुएशन का गाना है जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला
0: सौभाग्य जी
1: चिट्ठी के जरिए आया था।
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे,
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
0: जी।
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
0: ओके,
1: बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई तो वो पहले है,
0: पहले है।
1: तो हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालयन नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए
1: थी।
0: अच्छा।
1: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा। 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और एक साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में, और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े जबरदस्त नेशनल फॉरवर्ड के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो चारपाई पर बैठ के सुनाते थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसी वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं, ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं कर सकते थे, और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल। तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है बीएसएफ में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है वो, उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: बीएसएफ में एंट्री के लिए 3 लेवल है, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल
0: जी।
1: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
0: ठीक है,
1: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ

0: इलेक्शन कमीशन के तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है।
1: ठीक है,
0: रिटर्न शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं
1: ओके,
0: जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटर्न बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी।
1: ओके,
0: तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स
1: फिट
0: का
1: होना
0: इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी
1: ठीक है
0: चाहिए और रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी चाहिए।
1: जी।
0: ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है,
1: बिल्कुल
0: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है,
1: बिल्कुल
0: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता
1: मौका
0: है,
1: मिलता है
0: विदेश में जाने का मौका मिलता है।
1: जी। सर ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूँगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आपका जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है,
0: जी
1: और
0: जी
1: उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप यूएसए, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
0: इस इंजरी के बाद में एक
1: जी
0: दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया,
1: जी
0: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तैयबा की तरफ से।
1: जी
0: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई,
1: जी
0: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा, और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
1: जी
0: सरकारी
1: तो 25 साल जो
0: काउंसलिंग,
1: सर आपने BSF में दिए उसके
0: जी
1: अलावा,
0: उसके अलावा ये 9 वर्ष NIA में,
1: अच्छा
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है, मेरे
1: अच्छा
0: दिल से लगा हुआ है। मैं
1: बिल्कुल
0: घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया, और
1: अच्छा
0: काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया
1: कोर
0: है,
1: एरिया है
0: जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता
1: जी।
0: हूं।
1: सर आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर FM रेनबो की ऑल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूँ, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
0: थैंक
1: ये
0: यू सो मच
1: गिरीश हैं
0: गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं, तो थैंक यू सो
1: अच्छा
0: मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे, तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और आप उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
1: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेशी सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी
0: ये
1: है।
0: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर
1: जी
0: से बनी है,
1: जी
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी,
1: जी
0: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी।
1: बिल्कुल
0: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजडी के साए में ये फिल्म रिलीज हुई थी,
1: ओके
0: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है।
1: जी
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजडी हुई थी देश में,
1: जी जी जी
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है। बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
1: जी
0: स्ट्रीम
1: सर
0: हो
1: एक
0: रहा है।
1: मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: बिल्कुल
1: लिखना
0: लिखना
1: चाहते हैं, यश शिंदे
0: चाहेंगे।
1: हैं ये। DIG नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप, नरेंद्रनाथ सर आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप, चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है,
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
0: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप बड़े जज्बाती
1: बिल्कुल
0: हैं, देश प्रेमी हैं, थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड
1: और सर
0: फॉर मी।
1: यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है, तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को,
0: जी
1: आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर
0: अपने युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके

0: से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ पर्पज़ हैं अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके
1: जी
0: पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं।
1: जी
0: तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के
1: बेशक,
0: चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज़ होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, और आप जैसी शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, फॉर्मर DIG BSF। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू
1: आप
0: भाई,
1: सुन रहे हैं
0: थैंक
1: आकाशवाणी रेनबो। अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही हैं रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

0: जाए जाए जाए जाए जाए जाए
1: चाय चमक ले जोड़रा भाई भाई
2: गरम चाय गरम चाय
3: तंकड़ तत्ता दिन तंकड़ तत्ता दिन
2: आओ
3: तंकड़ तत्ता दिन तंकड़ तत्ता दिन

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप रिम झिम प्रोग्राम के तहत नागा से तेलुगु और दीगर जबानों के प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे। सामाइन, स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:30 और 15 सेकंड हुआ चाहते हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नारंग।

0: सामाइन आज की बजमन रंग कुछ इस तरह सजी है। आगाज पर सुनिए हरफे ताबिंदा, तहरीर और पेशकश आयशा बतुल की है। आज की बजम में मुशायरे की महफिल सजेगी, जिसमें हिस्सा लिया है रऊफ खैर, जफर फारूकी, समीउल्ला हुसैनी समी, तैयब पाशा कादरी और ताहिर गुलशन आबादी। सामाइन इसके अलावा आज की बज़्म में एक खसूसी नशरिया पेश किया जाएगा, जिसका उन्वान है आकाशवाणी के 90 साल। तहरीर पेशकश फहमिदा फहमोश की है और गीत सुरीले गाते जा के तहत नाकाबिले फरामोश सुरीले नगमे पेश करेंगे। पयाम शब पर हमारी बज़म का इख्तिताम होगा, जिसकी तहरीर व पेशकश जैदी की है। यह था आज पेश किए जाने वाले बज़्म रंग के प्रोग्राम्स का खुलासा। समाइन आइए हस्बे दस्तूर बज़्म रंग का आगाज करते हैं हरफे ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश आयशा बतुल की है।
1: ज़िंदगी एक मुसलसिल सफ़र है जिसमें इंसान को मुख्तलिफ चैलेंजेस, नाकामियों, कामयाबियों और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। हर इंसान की शख्सियत में खूबियों के साथ साथ खामियां भी होती हैं, लेकिन जो शख्स अपनी कमज़ोरियों को पहचानता है, उन्हें कबूल करता है, उन पर काबू पाने की कोशिश करता है, वही असल में ताकतवर है। अक्सर लोग अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें शर्मिंदगी या कमज़ोरी की अलामत समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कमज़ोरी को तस्लीम करना बुज़दिली नहीं बल्कि बहादुरी की अलामत है। जब इंसान अपनी खामियों को पहचानता है तो वो फिर खुद शनासी के सफ़र पर निकल पड़ता है। ये सफ़र इंसान को अपनी ज़ात के गहरे पहलुओं से रोशनास कराता है, जिससे वो अपनी शख्सियत को बेहतर बना

आकाशवाणी के नवसाला इस खसूसी प्रोग्राम में सामईन आप सभी का खैर मकदम है। आकाशवाणी सिर्फ तफरी का जरिया नहीं था, बल्कि इसने दूरदराज के देहातों तक साइंस, तालीम और सेहत की मालूमात पहुंचाकर एक खामोश समाजी इनकलाब बरपा किया। आज का दिन हिंदुस्तान की नशरियात की तारीख में एक सुनहरा संग मील है। नौ दहाइयाँ यानी पूरे 90 साल, एक सफ़र जो आवाज़ की लहरों से शुरू हुआ और दिलों की धड़कन बन गया।

आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि हमारी तहजीब, सकाफत और तारीख का अमीन है। जब 1930 की दहाई में इस इदारे की बाकायदा शुरुआत हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये हर घर का हिस्सा बन जाएगा और ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान व अदब की तरवीज में आकाशवाणी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पितरस बुखारी, नून मेम राशिद और फैज़ अहमद फैज़ जैसे अजीम नाम इस इदारे से वाबस्ता रहे। इस प्लेटफॉर्म ने उर्दू ड्रामों, मुशायरों और गज़लों को गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचाया। जब शाम को उर्दू सर्विस की नशरियात शुरू होती थी तो पूरा माहौल अदबी हो जाता था और फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम शहर तमन्ना और अदबी रिसाले की शक्ल में पेश किए जाने वाले प्रोग्राम भी काबिले जिक्र रहे। इन प्रोग्रामों ने न सिर्फ तफरी फराहम की बल्कि जुबान का मेयार भी बरकरार रखा। आकाशवाणी ने हमेशा नई नस्ल को अच्छे तलफ्फुज और तहजीब से रोशनास करवाया। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, लेकिन आकाशवाणी की मकबूलियत में कमी नहीं आई। अब ये सफ़र शॉर्ट वेव और मीडियम वेव से निकलकर एफएम और अब मोबाइल ऐप्स तक पहुंच चुका है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप के ज़रिए अब दुनिया के किसी भी कोने में आकाशवाणी को सुना जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि जड़ें जितनी पुरानी हों, शाखें उतनी ही नई हो सकती है। आकाशवाणी का तذکرہ उस वक्त तक अधूरा है जब तक हम हिंदुस्तान के दिल यानी हमारे किसान भाइयों और देहातों की बात ना करें।

मुल्क में सब्ज इनकलाब हो रहा था, तब आकाशवाणी ने किसानों का हाथ थामा। किसानों को जदीद ज़रई साइंस, कीड़े मार अद्वियात और नए बीजों की मालूमात फराहम की। साइंसी तरीक़ों की बदौलत मुल्क में

0: अनाज की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। आकाशवाणी ने बरवक्त साइंसी मालूमात देकर किसानों को कुदरती आफात और फसलों के नुकसान से बचाया। हालांकि उस वक्त किसानों के जो प्रोग्राम थे वो टीवी पर भी मकबूल हुए, लेकिन आकाशवाणी पर इसकी पहुंच हिंदुस्तान के उस दूरदराज खेत झोपड़ी तक थी जहां बिजली भी नहीं पहुंची थी। आकाशवाणी के इस प्रोग्राम ने किसानों को रिवायती खेती से निकालकर जदीद टेक्नोलॉजी, बीजों की नई अकसाम और मौसम की दुरुस्त मालूमात फराहम की। सच तो ये है कि आकाशवाणी के प्रोग्राम सिर्फ तफरी का जरिया नहीं थे, बल्कि उसे मुल्क की मईशत और तरक्की का एक मजबूत सुतून बना दिया गया। आज भी जब सुबह या शाम के वक्त किसान भाइयों के लिए नशरियात शुरू होती हैं, तो हमारे किसानों को लगता है कि आकाशवाणी उनके खानदान का एक हिस्सा है। बदलते दौर के साथ स्क्रिप्ट बदली, अंदाज बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो है सामाइन का एतमाद। आकाशवाणी की साख आज भी वही है। अब न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ शख्स अपनी मिट्टी की आवाज सुन सकता है। जब हम आकाशवाणी की तारीख का वरक उलटते हैं तो उर्दू जुबान व अदब का एक सुनहरा दौर सामने आता है। कई नामवर शख्सियात ने इस इदारे को अपने खूने जिगर से सींचा है। ऑल इंडिया रेडियो के ड्रामे शाम के वक्त जब शुरू होते थे तो गलियों में सन्नाटा छा जाता था और लोग सहरजदा होकर लाउड स्पीकर से चिमट जाते थे। बिल्कुल रात के पिछले पहर होने वाले वो कुल हिंद मुशायरे जिन्होंने जुबान के मेयार और तहजीब को हर घर तक पहुंचाया। जब हम इस नौ दहाइयों के सफर की बात करते हैं तो एक ऐसी आवाज कानों में रस घोलती है जिसने पूरे बरे सगीर को अपना दीवाना बना दिया था।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ एशिया भर के चहेते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला की कहानी। जब 1951 में रेडियो सलोन के लिए बंबई में स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रिकॉर्ड होना शुरू हुए तो उन प्रोग्रामों से मेरी राहें दो तरह से जुड़ी। उन प्रोग्रामों के लिए प्रोग्राम डायरेक्टर थे हमीद सायानी साहब।
0: जी हाँ भाइयों और बहनों, जैसे ही ये अल्फाज रेडियो पर गूंजते थे वक्त थम जाता था। हम बात कर रहे हैं सदाकारी के बेताज बादशाह अमीन सयानी साहब की। इनका प्रोग्राम बिना का गीतमाला रेडियो की तारीख का मकबूल तरीन प्रोग्राम बना। हर बुध की शाम लोग ये जानने के लिए बेताब रहते थे इस हफ्ते कौन सा गाना नंबर वन पर है। अमीन सयानी साहब का वो मखसूस अपनायत से भरा अंदाज और आकाशवाणी के कमर्शियल और फिल्मी गीतों के प्रोग्रामों ने आकाशवाणी को हर आम व खास की जिंदगी का हिस्सा बना दिया।

तफरी और अदब के साथ साथ आकाशवाणी हमारी जिंदगी का सबसे मालूमाती जरिया भी रहा है। दूरदराज के देहातों तक जहां स्कूल या असातिज़ा नहीं थे, तालीम पहुंचाई गई। बच्चों के लिए अखलाकी, जहनी और बुनियादी तालीमी प्रोग्राम शुरू किए गए। इसके साथ साथ सेहत और खानदानी बहबूद के लिए भी बेदारी शुरू की गई, जैसे कि चेचक, पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों के खिलाफ साइंसी मालूमात आम की गई। इसके अलावा माओं और बच्चों की सेहत के लिए मुतवाजन गिजा की अहमियत को उजागर किया गया। साइंसी नुक्ते नजर से अगर हम देखें तो आकाशवाणी ने समाज में फैले हुए तोहम परस्ती आदात और दुखियानूसी ख्यालात का साइंसी दलीलों से खातिमा किया। वबाई अमराज के दौरान साइंसी हकायक पेश करके खौफ व हिरास को रोका गया। आकाशवाणी ने खवातीन के प्रोग्राम भी नशर किए, जैसे कि कढ़ाई, सिलाई, घरेलू सनत और खवातीन के हुकूक पर मबनी तालीमी गुफ्तगू नशर की गई। आकाशवाणी ने साइंस को अवामी बनाया, जैसे कि पेचीदा साइंसी एजादात को आसान जुबान और कहानियों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया गया। साथ ही साथ रोजमर्रा की जिंदगी के मुजाहरे, जैसे बारिश का होना या दूध का उबलना, इसके पीछे छुपी साइंस को समझाया गया। स्कूल और कॉलेज के तलबा के लिए नेशनल साइंस क्विज मुनक्किद किए गए, जिससे नौजवानों में साइंसी तहकीक का शौक पैदा हुआ। आकाशवाणी ने अवाम में माहौलियाती बेदारी के प्रोग्राम भी नशर किए। दरख्तों की कटाई रोकने और पानी बचाने के साइंसी तरीकों की तशहीर की गई। हवा, पानी और मिट्टी की आलूदगी के सेहत पर असरात के बारे में देही अवाम को बाखबर किया गया। जानवरों और परिंदों के तहफ्फुज़ के लिए मालूमाती दस्तावेजी प्रोग्राम नशर किए गए। इसके साथ साथ कुदरती आफात के दौरान भी आकाशवाणी ने लाइफलाइन का काम किया, जहां साइंसी माहिरीन ने बचाव और वबाई अमराज से बचने की लाइफ हिदायतें दी थी। आफात के बाद पीने के पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन या उबाल कर साफ करने की साइंसी तकनीक को गांव-गांव पहुंचाया गया। आकाशवाणी के खबरों की साख इतनी मजबूत थी कि लोग इस पर आंख बंद करके यकीन करते थे।

थी तो करोड़ों सामाइन के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती थी। आकाशवाणी ने सिर्फ मालूमात फराहम नहीं की, बल्कि पसमांदा और नाख्वांदा भारतीय समाज को एक तरक्की पसंद और साइंसी सोच रखने वाले मुआशरे में तब्दील किया। इसने जुबान, मजहब और जात-पात की दीवारों को गिराकर पूरे मुल्क को इल्म के एक धागे में पिरो दिया।

0: 90 साल के इस तवील तारीखी और कामयाब सफ़र पर हम अपने तमाम सामाइन का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस कारवां का हिस्सा रहे। आकाशवाणी की ये आवाज़ मोहब्बत, अमन और तरक्की का पैगाम बनकर हमेशा गूंजती रहे।
1: आकाशवाणी रेडियो तालीम, तफरी, मालूमात और शोर बेदारी का मौसर जरिया है जो माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सामिन, अभी आप फीचर समाप्त फरमा रहे थे। उन्वान था आकाशवाणी के 90 साल। तहरीर व पेशकश फहमिदा फहमोश की थी। सामिन, बज़्म नरम को जारी रखते हुए आइए सजाते हैं मुशायरे की महफिल। इस मुशायरे में हिस्सा लिया है जनाब रऊफ़ खैर, जनाब जफ़र फारूक़ी, जनाब समीउल्ला समी हुसैनी, जनाब तैयब पाशा कादरी, जनाब ताहिर गुलशन आबादी। आइए सुनते हैं महफिले मुशायरा।
2: दोस्तों, नहरंग प्रोग्राम में एक मुशायरा यानी मुनक़िद होने जा रहा है। आज इस मुशायरे की सदारत हैदराबाद के मुमताज़ शायर, अदीब, नखात डॉक्टर रऊफ़ खैर साहब करेंगे। मैं उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे शहर हैदराबाद के दीगर शुरा भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जैसे ताहिर गुलशन आबादी और समीउल्ला हुसैनी समी, डॉक्टर तैयब पाशा कादरी और नाचीज़ ज़फ़र फारूक़ी। आइए इस महफिल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर

0: वाह
1: बहुत अच्छा।
2: रहता था चटाई पे वो सुल्तान हमारा।
1: वाह।
2: और ये गजल का शेर देखिएगा,
1: वो
2: आना तेरा सामने वैसे ही अचानक
1: अचानक। वाह।

0: के तीर का मैं खुद शिकार हूँ। नशा गमे हयात का कुछ और चाहिए, आखिर नशा गमे हयात का कुछ और चाहिए, सहबाए उम्र का मैं उतरता खुमार हूँ। सहबाए उम्र का मैं उतरता खुमार हूँ, मखताए के हर सांस आती जाती यही कहती है समी। हर सांस आती जाती यही कहती है समी, दर पे तेरी हयात के मैं पहरेदार हूँ। दर पे तेरी हयात के मैं पहरेदार हूँ, लारैब मैं तेरा हूँ इताअत गुजार हूँ, खाने तेरी अताओं पे परवरदिगार हूँ। सयाद मुझको मार के बदनाम हो ना तू, सयाद मुझको मार के बदनाम हो ना तू, अपनी अना के तीर का मैं खुद शिकार हूँ। ये गजल का मतलब मुलाजा कीजिए। दौलत से ये जरूरी नहीं हर खुशी मिले। दौलत से ये जरूरी नहीं हर खुशी मिले, मुमकिन कहाँ चिराग तले रोशनी मिले। दौलत से ये जरूरी नहीं हर खुशी मिले, मुमकिन कहाँ चिराग तले रोशनी मिले, सोहबत जो जिंदगी में अगर आपकी मिले। सोहबत जो जिंदगी में अगर आपकी मिले, इस जिंदगी को फिर से नई जिंदगी
1: मिले।
0: सोहबत जो जिंदगी में अगर आपकी मिले, इस जिंदगी को फिर से नई जिंदगी मिले। सही का इस्तेमाल, लफ्ज सही का इस्तेमाल किया हूँ, मुलाजा कीजिए। इस कौम को सही अगर रहबरी मिले।
1: अच्छा,
2: क्या बात है।
0: इस कौम को सही अगर रहबरी मिले, दुनियाए फिर से कदमों में उसकी पड़ी मिले। रंजो अलम की मंजिलें मिल जाएंगी उसे, रंजो अलम की मंजिलें मिल जाएंगी उसे, दुनिया में जिस किसी को जो तेरी गली मिले।
3: क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है।
0: हम थक चुके हैं मिलके मशीनों से शहर में, हम थक चुके हैं मिलके मशीनों से शहर में, मुमकिन नहीं कि शहर में अब आदमी मिले।
1: आदमी मिले,
0: कब जिंदगी सुकून से गुजरेगी इस जगह, हर एक कदम पे मौत जहाँ पर खड़ी
1: मिले।
0: मखता है कि एहसास इससे मिलके यही होता है समी, एहसास उससे मिलके यही होता है समी, जैसे अंधेरी शब में मुझे चांदनी
3: मिले।
0: जैसे
3: मतलब पढ़ लीजिए फिर,
0: मुझे चांदनी मिले। दौलत से ये जरूरी नहीं हर खुशी मिले, मुमकिन कहाँ चराग तले रोशनी मिले।
3: मुमकिन कहाँ चराग तले रोशनी मिले। ये थे मुमताज शायर जनाब समीउल्लाह हुसैनी समी। अपने खतात और रुबाइयात के बाद दो खूबसूरत गजलें सुनाई और आप सब लोगों ने दादो तहसीन से नवाजा। आइए मुशायरा इख्तितामी समत रवानदवा है। मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देता हूँ जो इदारे दबिस्तानी में गुज़िश्ता 45 साल से अपना कलाम सुना रहा है और हम सब लोग जिसे ताहिर हुसैन आबादी के नाम से जानते हैं। मैं आली जनाब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें।
1: सदर मुशायरा की इजाज़त से, हक का परचम लिए जब कोई खलंदर निकला।
3: अच्छा,
1: मुश्किल रदीफ है। हक का परचम लिए जब कोई खलंदर निकला, रास्ता रोकने आफात का लश्कर निकला। रास्ता रोकने आफात का लश्कर निकला। ये मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए कि इंतहा खुशियों के एहसास की बनकर निकला।
0: क्या कहने,
1: इंतहा खुशियों के एहसास की बनकर निकला, आप आए मेरी आंखों से समंदर निकला। आप आए मेरी आंखों से समंदर निकला। शेर एहसास की भट्टी में जो तपकर निकला। शेर एहसास की भट्टी में जो तपकर निकला, उसका हर लफ्ज चमकता हुआ गौहर निकला। उसका हर लफ्ज चमकता हुआ गौहर निकला। शेर देखिए कि अपने खालिक को खुदा मानने तैयार नहीं। अपने खालिक को खुदा मानने तैयार नहीं, आज का आदमी शैतान से बढ़कर निकला। आज का आदमी शैतान से बढ़कर निकला। अपने खालिक को खुदा मानने तैयार नहीं, आज का आदमी शैतान से बढ़कर निकला। ये शेर देखिए, खास तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, इम्तिहान गाह में

0: वहदत मेरी कायम ही रही।
1: अच्छा बहुत
0: सुने
1: खूबसूरत,
0: समी साहब,
1: वाह
0: इम्तिहान गाह में वहदत
1: वहदत
0: मेरी कायम ही रही, मुझसे बढ़कर कोई निकला कोई कमतर निकला।
2: क्या
1: वाह,
2: बात है, मैं बढ़कर
1: अच्छा
2: कोई कमतर निकला,
0: मुझसे बढ़कर
1: वाह
0: कोई निकला
1: वाह वाह
2: कोई
1: वाह,
2: कमतर,
0: कोई
2: बहुत अच्छे,
0: कमतर
2: क्या
0: निकला।
2: अच्छा इम्तिहान
1: वहदत
2: गाह
1: तो
2: में
1: कायम
2: क्या
1: रही
2: लिखा
1: है।
2: है।
1: वाह
2: इम्तिहान
1: वाह
2: गाह में वहदत मेरी
1: कायम
0: कायम ही रही,
1: वाह,
0: मुझसे बढ़कर कोई निकला
1: कोई
0: कोई
1: कमतर निकला,
0: कमतर निकला,
1: कमतर निकला।
0: आखिरी वक्त भी दिल मेरा वफादार रहा।
1: अच्छा वाह,
0: आखिरी वक्त भी दिल मेरा वफादार रहा, आपका नाम मेरे मुंह से बराबर निकला।
2: क्या बात है,
0: आपका नाम
1: बहुत
0: मेरे
1: अच्छा,
0: मुंह से
1: वाह वाह
0: बराबर
1: बराबर
0: निकला।
1: बराबर, वाह वाह,
0: जी,
1: अच्छा इस्तेमाल कर, वाह
0: आखिरी वक्त भी दिल मेरा वफादार रहा,
1: वाह बहुत अच्छा,
0: आपका नाम मेरे मुंह से बराबर निकला।
1: बराबर
0: ये
1: निकला।
0: देखिए कि रात ढलती है तो ढलती है कयामत ढाकर।
1: अच्छा
0: रात
1: ढलती है तो
0: ढलती है
1: ढलती
0: तो
1: है
0: ढलती है कयामत
1: कियामत ढाकर,
0: ढाकर, दिन निकलता है तो लगता है कि खंजर निकला।
2: वाह
0: दिन
1: वाह
0: निकलता
1: वाह,
0: है तो
1: लगता है कि
0: लगता
1: खंजर
0: है कि
1: लगता है कि
0: खंजर
1: खंजर
0: निकला। ये
1: निकला।
0: शेर देखिए, था वो बौना ही
1: हाँ
0: मगर देखिए ऐसा भी हुआ।
2: अच्छा,
0: था वो बौना ही
2: मगर
0: मगर
2: देखिए,
0: देखिए ऐसा भी हुआ, पहुंचा बौनों में तो किस्मत से खदावर निकला।
2: अच्छा
1: क्या बात है,
0: पहुंचा
1: बहुत अच्छा,
0: बौनों में तो
2: किस्मत से,
0: किस्मत
1: किस्मत
0: से
1: से
0: खदावर
1: खदावर निकला,
0: निकला।
1: बहुत
0: देखिए
1: अच्छा,
0: देखिए फातहे आलम के सफर का अंजाम,
1: देखिए,
0: देखिए
1: हाँ
0: फातहे आलम के सफर का
1: वाह
0: अंजाम, आखिरी वक्त तेही दस्त सिकंदर निकला।
1: बहुत अच्छा,
0: आखिरी
1: बहुत
0: वक्त
1: अच्छा, मजमून अच्छा है भाई, बहुत
0: तेही
1: वाह
0: दस्त सिकंदर निकला,
1: वाह,
0: अंजुमन में तेरी आया तो बना मैं ताहिर।
1: अरे बहुत
0: अच्छा,
1: अच्छे, अंजुमन में तेरी
0: अंजुमन में
1: तेरी
0: तेरी
1: आया तो बना
0: आया
1: मैं
0: तो
1: ताहिर,
0: बना मैं
1: ताहिर,
0: ताहिर,
1: बहुत अच्छा,
0: अच्छा। अंजुमन से तेरी निकला तो मुअत्तर निकला।
1: वाह बहुत अच्छा,
0: अंजुमन
1: अरे
0: से तेरी
1: मोहतरों के निकला,
0: निकला तो
1: मोहतर निकला,
0: मुअत्तर निकला,
1: मोहतर निकला,
0: जी इंतहा खुशियों के एहसास की बनकर निकला,
2: वाह वाह,
0: आप आए मेरी आंखों से समंदर निकला। बहुत छोटी
1: मैं
0: बहर है,
1: बिल्कुल इर्शा
0: चले।
1: इर्शा,
0: किसको दिखलाएं अपना हुनर,
1: अच्छा बहुत अच्छा, गैर
0: किसको
1: मुरद्दब है इर्शा
0: दिखलाएं
1: माशाल्लाह,
0: अपना
1: वाह
0: हुनर,
1: वाह वाह,
0: कोई जिंदा नहीं दीदावर।
1: बहुत
0: अच्छा,
1: अच्छा,
0: किसको दिखलाएं अपना हुनर,
1: कोई जिंदा
0: कोई
1: नहीं
0: जिंदा नहीं
1: दीदावर,
0: दीदावर, कैद में है मेरे बालों पर,
2: अच्छा
0: कैद में है
1: मेरे
0: मेरे
1: बाल,
0: बालों पर, लेकिन आजाद फिक्रो नजर।
2: अच्छा
1: अच्छा
2: देखिए, बहुत अच्छा,
0: लेकिन आजाद
1: फिक्रो नजर,
0: फिक्रो नजर,
1: अच्छा
0: आखिरत के लिए कुछ तो कर,
1: अच्छा
0: आखिरत के लिए
1: ये कुछ
0: कुछ
1: तो
0: तो कर,
1: कर,
0: जिंदगी है बहुत मुख्तसर।
1: अरे वाह वाह,
0: जिंदगी है बहुत
2: क्या
0: मुख्तसर, सामने कुछ है पीछे है कुछ, अर्ज कर रहा हूँ,
1: बात,
0: सामने कुछ है पीछे है कुछ, सारी दुनिया फरेबे नजर,
2: वाह
0: सारी दुनिया
1: फिर पढ़िए सर,
0: फरेबे
1: शायर भाई फिर
0: नजर।
1: पढ़िए,
0: सामने कुछ है पीछे है कुछ, सारी दुनिया फरेबे नजर।
1: वाह वाह वाह,
0: ये शेर देखिए, इसके अतराफ नेकी बदी,
2: अच्छा
0: इसके अतराफ नेकी बदी,
2: बड़ी,
0: आदमी मरकजे खैर व शर,
2: वाह बहुत अच्छे,
0: आदमी मरकजे खैर व
1: अच्छा
0: शर,
1: है सर,
0: इसके अतराफ नेकी बदी, आदमी मरकजे खैर व शर,
2: वाह वाह वाह,
0: क्या हुई उनके जेरे कदम,
1: वाह
0: क्या हुई उनके जेरे कदम, कहकशां बन गई रह गुजर।
1: बहुत अच्छा, बहुत
0: कहकशां बन गई रह
1: रहगुजर,
0: गुजर, ढूंढने उसको निकला है चांद,
1: हाँ
0: ढूंढने उसको
2: उसको निकला
0: निकला है
2: है,
0: चांद, है समंदर में मद्दो जजर।
2: वाह वाह
1: ढूंढने उसको निकला है
0: जी,
1: चांद,
0: ढूंढने उसको निकला है
2: क्या
0: चांद,
2: ख्याल है भाई, वाह
0: है
2: वाह
0: समंदर में मद्दो जजर।
2: बहुत
0: आप
2: अच्छा,
0: सारे शोरा की नजर कर रहा हूं, एक शेर खास तौर पर,
1: अच्छा
0: बूढ़े शोरा की गजलें जवां,
2: अच्छा
0: बूढ़े शोरा की गजलें
2: शोरा,
0: जवां, सूखे पेड़ों पे बरगो समर।
2: वाह वाह वाह
0: बूढ़े शोरा की गजलें जवां,
2: वाह, सूखे पेड़ों
0: सूखे
2: पे,
0: पेड़ों पे बरगो समर,
1: बहुत अच्छे,
0: ताहिर इंसान दुनिया के सब, ताहिर इंसान दुनिया
2: दुनिया
0: के सब, काश हो जाते शीरो शकर।
1: शकर, बहुत
2: क्या
1: अच्छा,
2: बात है, वाह
1: बहुत
2: वाह
1: बढ़िया,
2: वाह वाह,
0: ताहिर इंसान दुनिया के सब,
2: काश हो
0: काश
2: जाते,
0: हो जाते शीरो शकर, बूढ़े शोरा की गजलें जवां, सूखे पेड़ों पे बरगो समर।
1: बहुत बहुत
2: वाह वाह बहुत खूब। ये थे जनाब ताहिर मुशाबादी जो अपना खूबसूरत कलाम सुना रहे थे कि जिंदगी है बहुत मुख्तसर। आइए सामईन मोहतरम, मुशायरे के अख्ताम में आज की इस महफिल के सदर मुशायरा डॉक्टर रऊफ खैर साहब से मैं अदबन मुल्तमिस हूँ, सरदारती कलाम से नवाजें डॉक्टर रऊफ खैर साहब।
3: अहबाब की मोहब्बतें हैं इनकी नजर गजलें कर रहा हूँ दो तीन। सामईन मोहतरम, गजल का मतला पेश करता हूँ। गजल का मतला है, अर्ज किया है, छोटा है बड़ा बोल अगर बोल रहा है।
2: अच्छा है,
3: छोटा है बड़ा बोल अगर बोल रहा है, इस तरह तो पोल अपनी ही वो खोल रहा है।
4: वाह वाह वाह,
3: इस तरह तो पोल अपनी ही वो खोल रहा है। छोटा है बड़ा बोल अगर बोल रहा है, इस तरह तो पोल अपनी

0: पोल अगर बोल रहा है, इस तरह तो पोल अपनी ही वो खोल रहा है, मीजान में गौहर तो ये अनमोल रहा है।
1: अच्छा,
0: मीजान में गौहर तो ये अनमोल रहा है, दिल गम को सरे नोके मिजा तोल रहा है, दिल गम को सरे नोके मिजा तोल रहा है। मीजान में गौहर तो ये अनमोल रहा है, अरे दिल गम को सरे नोके मिजा तोल रहा है। शेर देखिए कि हाथों में है इसके कभी पैरों में है उसके,
2: अच्छा
0: हाथों में है इसके कभी पैरों में है उसके, गोला भी सियासत की तरह गोल रहा है, गोला भी सियासत की तरह गोल, हाथों में है इसके कभी पैरों में है उसके, हाथों में है इसके कभी पैरों में है उसके, हाँ गोला भी सियासत की तरह गोल रहा है। शतरंज के मोहरे हैं तो काबू में हैं, वरना कर दिए, अरे शतरंज के मोहरे हैं तो काबू में, काबू में है, वरना हाथी हो के अब ऊंट हो बेडोल रहा है, हाथी हो के अब ऊंट हो बेडोल रहा है। शतरंज के मोहरे हैं तो काबू में है, वरना हाथी हो के अब ऊंट हो बेडोल रहा है। शेर देखिए, ये शेर बहुत मानाखिज है कि इकवा की रियायत हो
2: अच्छा
0: कि तो लखवा नहीं होता, इकवा की रियायत हो तो लखवा नहीं होता। अब झोल भी वल्लाह कहाँ झोल रहा है, अब झोल भी वल्लाह कहाँ झोल रहा है, इकवा की रियायत हो तो लखवा नहीं होता, अब झोल भी वल्लाह कहाँ झोल रहा है। शेर देखिए, अर्ज करता हूं कि किरदार भी मंजर भी बदल जाए भले ही, किरदार भी
1: मंजर
0: भी बदल जाए भले ही, अरे मेरा तो ड्रामे में अहम रोल रहा है, मेरा तो ड्रामे में अहम रोल रहा है, किरदार भी मंजर भी बदल जाए भले ही, मेरा तो ड्रामे में अहम रोल रहा है, मेरा तो ड्रामे में अहम रोल रहा है। और सरे मख्ता शेर अर्ज करता हूं मख्ते से पहले कि औराक पलट कर कभी तारीख उलट कर, औराक पलट कर कभी तारीख उलट कर, एक जहर सा जहरों में कोई घोल रहा है, एक जहर सा जहनों में कोई घोल रहा है। औराक पलट कर कभी तारीख उलट कर, एक जहर सा जहनों में कोई घोल रहा है।
2: वाह वाह वाह, फिर बढ़िया सब।
0: अरे औराक पलट कर कभी तारीख उलट कर, औराक पलट कर कभी तारीख उलट कर, एक जहर सा जहनों में कोई घोल रहा है। अब मख्तार करता हूँ देखिए कि मैं खैर सही खैर सरापा तो नहीं हूँ।
1: अच्छा,
0: अरे शेर सुनिए, मैं खैर सही खैर सरापा तो नहीं हूँ, हर शख्स में कोई ना कोई झोल रहा है, हर शख्स में कोई ना कोई झोल रहा है। मैं खैर सही खैर सरापा तो नहीं हूँ, हर शख्स में कोई ना कोई झोल रहा है। दो चार शेर और सुन लीजिए, अर्ज करता हूँ। हो गए ख्वाब हकीकत में फंसाने वाले,
2: अच्छा
0: हो गए ख्वाब
2: हकीकत में
0: फंसाने वाले, प्यार से रूठने वाले वो मनाने वाले, प्यार से रूठने वाले वो मनाने वाले, फासले बढ़ गए इस दर्जा न जाने वाले, फासले बढ़ गए
1: इस
0: दर्जा न जाने वाले, अब पशीमा है मेरे साथ न आने वाले, अब पशीमा है मेरे साथ न आने वाले। और शेर देखिए कि खुद को हम पल्ला इकबाल समझ लेते हैं,
1: क्या मिसे है
0: खुद को हम पल्ला इकबाल समझ लेते हैं, लफ्ज पर लफ्ज कवाफी के जमाने वाले,
1: क्या बात है भाई वाह वाह,
0: लफ्ज पर लफ्ज खुद को हम पल्ला इकबाल समझ लेते हैं,
1: लफ्ज पर लफ्ज,
0: हाँ लफ्ज पर लफ्ज कवाफी के जमाने, वहाँ खुद को हम पल्ला इकबाल समझ लेते हैं, लफ्ज पर लफ्ज कवाफी के जमाने वाले। और जो मेरे शेर का मौजू नहीं कुछ भी नहीं,
1: क्या बात,
0: जो मेरे शेर का मौजू नहीं कुछ भी नहीं, वो तो कतबे हैं खराबों के सिराने वाले,
1: क्या बात है,
0: वो तो कतबे हैं खराबों के सिराने वाले। जो मेरे शेर का मौजू नहीं
1: कुछ
0: भी नहीं, वो तो कतबे हैं खराबों

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वक्त गुजरने के साथ साथ फिल्मी गीतों में जिद्दत आती गई। 1950 और 1960 की दहाई को फिल्मी मौसीकी का सुनहरी दौर कहा जाता है। इस दौर में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा भोसले जैसे अजीम गुलकारों ने अपनी आवाज़ के जादू से लोगों के दिल जीत लिए। इनके गीत आज भी मकबूल हैं और हर आने वाली नस्ल इन्हें सुनने के लिए बेताब रहेंगी और शौक से सुनती रहेगी।

गीत और संगीत का बाहमी ताल्लुक़ नहायत गहरा और मज़बूत है। ये दोनों एक दूसरे के बग़ैर अधूरे हैं और इंसानी ज़िंदगी को खूबसूरती, खुशी और सुकून बख्शते हैं। गीत और संगीत हमेशा इंसान के दिल के करीब रहेंगे और ज़िंदगी को मज़ीद खुशगवार बनाते रहेंगे।

زمانه می اسمو

गीत सुरीले गाते जा के तहत अभी आप पुराने फिल्मी नगमे सुन रहे थे। सामाइन आइए सुनते हैं कल बज्म नरंग में पेश किए जाने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। कल रात 9:30 पर बज्म नरंग का आगाज होगा खिरात कलाम पाक से। हरफ ताबिंदा आयशा बुतुल पेश करेंगे। डॉक्टर माइक पर के तहत मौसम गर्मा और एहतियात और तदाबीर उन्वान पर डॉक्टर अब्दुल साजिद से बातचीत की जाएगी। गीत सुरीले गाते जा में फिल्मी नगमे पेश करेंगे और बज़म का अख्तिताम पयाम शब पर होगा। यह था कल पेश किए जाने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। सामाइन बज़म के आखिर में सुनते हैं पयाम शब। तहरीर व पेशकश जनाब जैदी की है।

इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तो खुद आश्कार हो या मुझे आश्कार कर। जिंदगी में मोहब्बत सिर्फ चाहने का नाम नहीं, बल्कि सच्चाई, खुलूस और पहचान का सफर भी है। अगर दिल में इश्क हो तो इसमें दिखावा ना हो, और अगर हुस्न हो तो वो गुरूर के पर्दों में कैद न रहे। ताल्लुकात की खूबसूरती इसी वक्त मुमकिन होती है जब दिल भी साफ हो और एहसासात भी आश्कार हों। इंसान को चाहिए कि वो अपने जज्बात में सच्चा हो, क्योंकि सच्ची मोहब्बत आखिरकार दिलों को एक दूसरे से रोशनास करा देती है।

अभी आप पयाम शब समात फरमा रहे थे। तहरीर और पेशकश जनाब जैदी की थी। सामाइन, इसी के साथ ही बज़्म नरंग अपने अख्तिताम को पहुंचती है। कल रात 9:30 पर बज़्म नरंग में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आदाब, शब

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेज़ी खबरें आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था।

अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त, आपका हमसफर शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से नगमे के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने और फिल्म है शक्ति।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का और मुझे दीजिए इजाजत। अपनों और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। 3 सदस्यों की एसआईटी का नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चलाई थी। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे ही स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। शिवम दुबे ने सबसे अधिक 47 रन बनाए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है पराया धन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। चलो तारे गिनते हैं, चलो तारे गिनते हैं। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। चलो फिर बातें भी करते हैं। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। चलो फिर सुनते भी हैं। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है। तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। चलो तारे गिनते हैं। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। चलो फिर बातें भी करते हैं। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। चलो तारे गिनते हैं। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कारवां, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: सीमा रेखा के बाहर
1: चौका। मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड आरोप।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कटी पतंग, आवाज है किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

शाम जब धीरे धीरे ढलती है तो सिर्फ सूरज नहीं जाता, हमारे भीतर की हलचल भी कहीं ना कहीं ठहरने लग जाती है। और इसी ठहरते हुए पल में हम महसूस करते हैं कि शायद हम खुद से बहुत दूर आ चुके हैं और अकेलापन हमें खलने लग जाता है। पर कभी सोचा है आपने कि वही अकेलापन होता है जो उस वक्त हमें खुद के करीब लाता है, खुद से मिलने का मौका देता है और यादें, रिश्ते, जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं सब एक एक करके सामने आने लग जाती हैं। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे मन ने कोई पुराना संदूक खोल दिया हो और जिसमें से एक एक करके पुरानी चीजें पुरानी यादों के साथ बाहर आ रही हूं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अगला गीत फिल्म का नाम है जाने अनजाने, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये जो रात होती है ना, ये रात कभी अचानक नहीं आती, वो दिन की हथेलियों से फिसल कर उतरती चली जाती है, जैसे कोई अधूरी बात धीरे धीरे गहरी होती जाती है। और वैसे ही जीवन भी बिना कहे बिना समझे धीरे धीरे बदलता रहता है। और रात रात हमारे भीतर के हर उस राह से गुजरती है जिसे हम बरसों तक देख नहीं पाते। हर व्यक्ति के भीतर एक अलग आकाश होता है, एक अलग दुनिया होती है, और हर आकाश के अंदर कुछ अनकहे तारे होते हैं जिनसे हम बहुत बार बातें करना भूल जाते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मन मंदिर, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

वक्त आ चला है, आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे FM गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात

ये 1:10 पर कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5

0: देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तीन भारतीयों सहित 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कीर्तिमान बनाने वाली टीम में शामिल तीन भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी पालपुनुरी, संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। नेपाल के कामी रीता शेरबा ने भी एक नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष बी इब्राहिम। Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की एक खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कल आज और कल, आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो।

0: muskuraj. Pelle Zerna muskuraj.
1: Pelle Zerna muskuraj.

कहते हैं कि यादें कहीं जाती नहीं, वे बस अपना स्वर बदल देती हैं। कभी वे मुस्कुराहट बनकर आती हैं, तो कभी कभी हल्की सी चुभन साथ ले आती हैं। पर सच ये है कि ये यादें ही हैं जो हमें हमारे भीतर थोड़ा थोड़ा बचाए रखती हैं। जो बीत गया वो खत्म नहीं हुआ, और जो भीतर कहीं ठहर गया वो हमें थोड़ा और गहरा कर गया। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है कुमार शानू और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है सलामी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में

कहते हैं कि हमारे जीवन से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं ना, वो शब्दों से नहीं चलते हैं, उन्हें चलाने के लिए जरूरत होती है एहसास की। जहां अपेक्षाएं कम होती हैं, वहां अपनापन अधिक होता है और वहीं रिश्ते एहसास के साथ सांस लेते हैं। ये जो रात होती है ना, ये हमें एक और बहुत गहरी बात सिखाती है। रात हमें सिखाती है कि किसी को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे समझना जरूरी होता है। क्योंकि जो दिल से जुड़ा होता है, अगर वो दूर है तो भी करीब महसूस होता रहता है। और जो दिल से जुड़े लोग नहीं होते हैं, वो आपके कितने भी करीब हों, उनसे आपको

दूरी महसूस होती है। रात सीखने, समझने और महसूस करने का मौका देती है। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, और फिल्म का नाम है आराधना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है संगम, आवाज है मुकेश की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर भी बल दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। बैठक में समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसी गैर कानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। शीर्ष दो में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात के 230 रन के लक्ष्य को चेन्नई की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूं।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो?
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
1: प्यार करते हो ना?
0: पर जरीन तुम,
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

तुम दिल की हर एक बात खुलकर मुझसे बात करो, तुम दिल की हर एक बात खुलकर मुझसे बात करो, रुक रुक के ना कहो कुछ भी, सीधे सीधे बात करो, रुक रुक के ना कहो कुछ भी, सीधे सीधे बात करो। जब रात थका दे तुमको और नींद भी साथ ना दे, जब रात थका दे तुमको और नींद भी साथ ना दे, मेरे पास चले आओ, बैठो और फिर बात करो, मेरे पास चले आओ, बैठो और फिर बात करो। जो आँख में ठहरी सी है लफ्जों में ढलती ही नहीं, जो आँख में ठहरी सी है लफ्जों में ढलती ही नहीं, उस खामोश सी हलचल को भी तुम मेरे साथ करो, तुम मेरे साथ करो, तुम दिल की हर एक बात खुलकर मुझसे बात करो, रुक रुक के ना कहो कुछ भी, सीधे सीधे बात करो।

सीधे सीधे बात करो। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम है संगम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है झील के उस पार।

कभी आना, कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की, इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की, हर सुबह शाम और रात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की, हर सुबह शाम और रात होगी। अधिकार होगा जब एक दूसरे के हर एक पल पर, अधिकार होगा जब एक दूसरे के हर एक पल पर, हम दोनों के प्रेम का, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी, तभी एक दूसरे से बात होगी। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है अंदाज़।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद सुरभि होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत और फिर मिलने के वादे के साथ। गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता

0: शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में आपसी समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत और फ्रांस ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली में अगले महीने की पहली तारीख को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी आगे की तारीख पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुंदेलखंड के ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। हैदराबाद में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish Abraham. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on PM Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the PM's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस ठहरी हुई खामोशी भरी रात में, आपके पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में। मैं हूं सुरभि आपके साथ। रात की अपनी एक अलग जबान होती है, कुछ अनकहे ख्वाब, कुछ आधी अधूरी बातें और कुछ ऐसे एहसास जो दिन की रोशनी में अक्सर छुप जाते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत कभी शोर नहीं करती, वो तो चुपचाप दिल की गहराई में उतरती है, कभी किसी गीत की तरह तो कभी किसी की याद की तरह। तो चलिए किसी की यादों में उतरते हैं गीत सुनते हुए, उन सदाबहार नगमों रोमांटिक गीतों के सफर पर जो दिल को सुकून देंगे और मुस्कुराने की वजह भी देंगे। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही गीत से जिसमें प्यार की मासूमियत भी है और अपनापन भी है। फिल्म है ब्लैकमेल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और चलिए सुनते हैं अगला गाना नाइट इन लंदन फिल्म से रफी साहब की आवाज में।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, एक ऐसा गीत जो बिना कम शब्दों के दिल की पूरी बात कह जाता है। कभी गौर कीजिएगा कि पुराने दौर की मोहब्बत कितनी सलीकेदार हुआ करती थी, ना लंबी बातें ना दिखावा, बस एक नजर एक मुस्कान और दिल की बात इशारों में समझ ली जाती थी। जी हाँ, शायद मोहब्बत की सबसे प्यारी जुबान खामोशी ही होती है, जहाँ आंखें बोलती हैं और दिल सुनता है। अच्छा, इस गीत से जुड़ा एक और दिलचस्प वाकया ये है कि ये गीत शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। ये गीत कश्मीर की बेहद खूबसूरत वादियों पर शूट किया गया। उस दौर में कश्मीर को हिंदी फिल्मों का स्वर्ग कहा जाता था और इस फिल्म ने उसकी खूबसूरती को लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। फिल्म का संगीत ओपी नैयर द्वारा तैयार किया गया, जिसकी धुने और उन धुनों में एक अलग ही चंचलता और नरमी महसूस की जाती थी। मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाज ने इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो चलिए इशारों इशारों में इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं, रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में।

महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

कान की वजह कोई और बन चुका होता है। दिल की दुनिया भी कितनी अजीब है, जिसे सबसे ज्यादा छुपाते हैं अक्सर वही दिल के सबसे करीब होता है।

रात थोड़ी और गहरी हो चली है और ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं दिल की, तो याद आता है वो प्यार जिसकी शुरुआत बड़ी खामोशी से होती है और पता जब चलता है तब मुस्कुराता है।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कभी बारिश, कभी चांदनी और कभी कोई गीत, प्यार की याद दिलाने के लिए इतना ही काफी होता है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद इंतजार है, जहां हर छोटी चीज किसी की याद बन जाती है। और चलिए अब ऐसा गीत सुनते हैं जिसमें अपनापन है, ठहराव है और बहुत सारी नरमी है। फिल्म है घर, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कितना सुंदर है वो एहसास जहाँ किसी के सपनों में अपना नाम मिलने लगे। मोहब्बत शायद वही है जहाँ दो लोग एक दूसरे को बदलते नहीं बल्कि समझने लगते हैं। और चलिए चलते चलते सुनते हैं प्यार की मीठी धड़कनों जैसे इस गीत को।

और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत

0: इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। दिल्ली में अगले महीने की पहली तारीख को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी आगे की तारीख पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। भारत और फ्रांस के बीच आठवां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। भारत और फ्रांस ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। शीर्ष दो में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस हार के साथ चेन्नई प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा, मैं हूँ सुरभि आपके साथ। रात की खामोशी में अब धीरे धीरे सुबह की हल्की हल्की रोशनी धीरे धीरे घुलने वाली है, घुलने लगी है। हवा में एक ठंडक है, एक ठहराव है, और इसी सुकून भरे पल में मैं हूँ सुरभि आपके साथ। जी हाँ, बातें करेंगे कुछ दिल की और कुछ गीत सुनाए जाएंगे।

जाएंगे, सुने जाएंगे, महसूस किए जाएंगे। तो चलिए आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत। फिल्म है मेरे जीवन साथी।

बार ये दिल चाहता है कि शोर ना हो, बस थोड़ी सी खामोशी रहे, थोड़ी सी हवा और कुछ पुराने पुरानी यादें, खूबसूरत एहसास और कुछ गीत बस दिल में रहें। और कभी कभी हम सब के मन के भीतर एक ऐसा कोना होता है जो सिर्फ सुकून ढूंढता है, फुर्सत के पल ढूंढता है। तो चलिए हम और आप इसी फुर्सत के पल को ढूंढते हैं और सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। कभी कभी किसी की छोटी मोटी शरारतें अचानक जब याद आती हैं तो मन खुश हो जाता है। और अगर बात करें सुबह की, तो ये सिर्फ खामोशी नहीं लाती बल्कि एक हल्की सी शरारत भी साथ लाती है। जैसे ठंडी हवा का यूं अचानक गालों को छू कर जाना, या फिर किसी की पुरानी याद में उसका मुस्कुरा देना। काफ़ी कुछ ऐसा है जो यादों में बसा होता है। तो इसी मीठी मुस्कान के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म है ऊंचे लोग।

अरुणिमा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन ये सुबह हमें शायद यही याद दिलाने को आती है कि हर दिन नया दिन है और हर एक नई कोशिश भी आप हर नई सुबह के साथ कर सकते हैं, करते हैं। और अगर मन थोड़ा सा थका हुआ हो तो शायद ये गीत हमको और आपको एक छोटी सी हिम्मत जरूर दे जाता है।

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री एलेक्सिस वाफियाडिस, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी साथ है। राष्ट्रपति बनने के बाद श्री निकोस की ये पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के बारे में नई दिल्ली में कल श्री गोयल ने कहा कि ये यात्रा समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से

0: चर्चा की भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने जांच दल को 25 जून तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। परिवार ने आरोप लगाया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और तथ्यों को छिपाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। दिल्ली में 1 जून को होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी बाद में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा। वहां कल का अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। अहमदाबाद में कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। जीवन चलने का नाम है और ये विचार हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में सुख और दुख, सफलता असफलता, हंसी आंसू आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। इंसान को हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और अच्छे दिन हमें खुशियों का महत्व समझाते हैं। रास्तों में कितनी भी बाधाएं आए, उनसे घबराने की बजाय अगर हम सीख लेकर आगे बढ़ते हैं तो जीवन की इस यात्रा को एक नए अनुभव के साथ कुछ नया सिखाते हुए हम

जीवन का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, इसमें संघर्ष, कठिनाइयाँ और अनेक परीक्षाएं आती हैं, लेकिन यही कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं, आगे बढ़ने का साहस देती हैं। जब रास्ता मुश्किल लगने लगे तब हार मानने की बजाय अपने लक्ष्य पर विश्वास करना चाहिए। मन में दृढ़ संकल्प हो, सकारात्मक सोच हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। और कठिनाई कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम उम्मीद का दामन थामकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।